0: सही दाना में होला दाना हाल दे नानी
1: खाई यू मत दाना से खाई ना कोई ले दिखे भंडार से दाना से ना कहाँ बदल आओ ने अब नेरा ये बुरा ले सुनने का ना उन्नत बने तो दिमाग खराब
0: ओहो बुशुक के जिसे सुन जाओ जाओ दिमाग चोरी खेलना जीते रुबा इस पर बारे दाना ले रहा हो तो
2: हजुर यदि तपाई पनि पशुपन्छी वा माछाको लागि सर्वोत्कृष्ट दानाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ ग्लोबल फिडका सबै खाले उत्कृष्ट दाना सुपथ मूल्यमा उपलब्ध रहेको छ। साथै बोइलर लेयर्स वा गिरिराज चल्ला पाल्न चाहेमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोप्राइटर रूपा गुरुङ मोबाइल नम्बर 9847 50571 र 9855 24171। रूपा स्टोर्स रोल्पा नगरपालिका 4 दिवान चुडीखेल रोल्पा।

0: रेडियो थाहासंचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो थाहासंचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।